जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया,

शैल पत्थर मह जंतु उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया।

सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिर जन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्या

सेवह तुद जीव, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भए।

जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत तेरे भगत।

हरी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असतूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम।

चेत जकीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहू फूल राजा हवे बैठा कहू सिमट भयो संकरी कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरु दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरनी परे किनके दुष्ट दुखत हवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने बाहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

पावन पंक्तियां अरदास बन जाए सचे पातशाह। जीवन दा मनोरथ यही है, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी मिलिया। जिहड़े महाराज कोलों सारा कुछ मंगदे ने, मंगना भी चाहिदा है, ग्रस्त जीवन विच सारा कुछ चाहिदा है, पर देण वाले नूं जरूर मंगो। जिन्हें दाते नूं ही मंग लिया ना, उहदे घर विच फिर सारा कुछ आ गया।

0: शरीर कटाए हो मैं कर राती
1: बहुपाती
0: नहीं तुल राम नाम बीचा
1: ब्रह्म नाम पार
0: नौखंड पृथ्वी प्रैत्र जीव अगन वाहे हो मद प्राण निवली कर्म कर भूवासन
1: जैन मार्ग संयम साधन
0: निमक निमक कर श्री कटावे
1: मैं न जावे
0: हर के नाम संतर्कत नाहे।

0: को बो साधना कर
1: मन देखो बुना मिख्या टर
0: जल तू वह बो दे अनी
1: सुनता होय काची पीत
0: मन हर के नाम की मैं माऊ
1: नारक नाम द्रे पति बहुमोच
0: बहुत श्याण जमका भू व्याप
1: अनिक जतन कृष्णा प्राप्त
0: एक नेक अग्नि नहीं बुझे
1: और पात्र गए नहीं सीज है
0: छूट नाही ऊब प्या
1: नौ व्याप माया जाल
0: और करतूत सगली जमडान
1: गोविंद भजन विरत नहीं मान
0: हर का नाम जब तो तुक जाए।

0: बलवाके ग्रह पितृवस ब्रह्मा नाम प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोहो
1: विकार
0: याहो जुगत विहने कई जन्म
1: ठाकुर
0: तुम पैरदास हम बार तेरे।

0: निष्ठा कुरसो नाही चारा
1: आपो की जय सत नमस्कार
0: राखे मन लागा परमेष्ठा
1: सर्व सुखता हो मन उठा
0: जिन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व सुख नानक तिन पाया
0: अगन साव अपनी दे रात
1: आपकी पत आनंद
0: उल्लास अपने अमान कच बहर सहले
1: अज्ञानी मन रोष त्री
0: अपने प्रतीत आप भी खोए
1: और उसका विश्वास न होवे
0: इसकी वस्ति सा कह रखे
1: प्रज्ञा ज्ञान माने मत है
0: उससे चौकुन करे निहाल
1: नानक साहिब सदा दयाल
0: बात माया के
1: सर प्रभु जामनी
0: रखी छाया सो रंग लावे
1: और इनसे उम्र पछतावे
0: जिसे सो चारण हार
1: लप प्रयोग ते अंधकार
0: हटाओ सो जो लावे ने
1: आको हाथ ना के
0: मन हर के नाम की प्रिय सुविधाई
1: कर क्या नाम आपने लाई
0: क्या चंदन कुटुम समाया
1: क्या हम ममता माया
0: क्या राजोगन धर्मा
1: क्या काम प्रभु विग्रह
0: क्या रत
1: नित्या रंग संगमा बेप्रस्ताव
0: नित्या द्रोह मोह अभिमान
1: नित्या आपस्वर कृत गुमान
0: अचर भगत साध की शरण
1: नान जप जप जीवे हर के चरण
0: नित्या सुन पर निंदा सुने
1: नित्या हस्त पत्र को हिरे
0: नित्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपा
1: नित्या रसना भोजन स्वाद
0: नित्या चरण पर विकार को तावे
1: नित्या मन पर लोल बहावे
0: नित्या तन नहीं प्रकारा
1: नित्या वास लेत विकार
0: बिन भूजे मिथ्या सब पय
1: सब दे नाम करण होए साधना च हो सुचा
0: नाम बिना तन अंध
1: मुखावता कर दुर्गंध
0: सिरण दिन रैन वृथा भी आए
1: ये बिना जो खेती जाए
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सबका
1: जो कृपण के निराखुदा
0: तन तेजन जेगट बसियो और
1: नाना दाते प्रबल जाओ
0: वह तवर कछ और कमावत
1: मन ही प्रीत मुंडो मुंडला
0: जानन हार प्रभु प्रवीण
1: बार एक न काम पीन
0: और उपदेश आप न करे
1: आप जाओ जन्म अमर
0: जिसके अंतर बसाए निरंकार
1: इसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम भाने तिन प्रवजाता
1: नान कुंजन चरण प्राप्त
0: करो बेनती पार गुरु सब जाने
1: अपना किया कै मन
0: आपे आप करत निवेरा
1: किसे दूज नाम किसे जात निरा
0: भाव स्यानव सगल तेरे है
1: सब जाने अंतम की रहे
0: जिस पावे तिस रहे लड़ लाए
1: अंतम प्रयास माए
0: हो से वक्त जिस

0: नानक रचना प्रभु रचि बहुविध अनेक प्रकार यशपरी
1: कहीं कोट होई पुजारी
0: कहीं कोट आचार्य विवार
1: कहीं कोट पे तीर्थवासी
0: कहीं कोट ब्रह्म दास
1: कहीं कोट वेद के स्रोते
0: कहीं कोट तपी सरोते
1: कहीं कोट आत्म त्यांतर
0: है कहीं कोट कपकार विचार
1: कहीं कोट नौतन नाम त्यावे
0: नानक ते का अंतर पावे
1: कहीं कोट पे अमनी
0: कहीं कोट अंतर ज्ञान
1: कहीं कोट कृपण कठोर
0: कहीं कोट अपजातन को
1: कहीं कोट प्रद्रव को हिरे
0: कहीं कोट पदू ना कर
1: कहीं कोट श्रमा है
0: कहीं कोट प्रदेश प्रभा
1: जित जित लाओ तित लगना
0: नानक करते की जाने करता
1: कहीं कोट सिद्ध जति जोगी
0: कहीं कोट राजे रस
1: कहीं कोट पंखे सर्प उपाय
0: कहीं कोट पात्र
1: कहीं कोट पौन पानी वह संत्र
0: कहीं कोट देश
1: कहीं कोट सस्य सो नक्षत्र
0: कहीं कोट देवदान
1: सागल सामग्री अपने सोतार है
0: नानक जी चीज पाव
1: कहीं कोट राजस्थान सातक
0: कहीं कोट वेद पुराण समर्थ
1: कहीं कोट की रत्न समुद्र
0: कहीं कोट नाना प्रकार
1: कहीं कोट की सिर जीवे
0: कहीं कोट गिरी मेर सोर
1: कहीं कोट जख्य किन्नर पिसा
0: कहीं कोट भूत रे चुकर मिर्गा
1: सब ते निरे सबो ते दूर
0: नानक आप भक्तिया
1: कहीं कोट पाताल के वासी
0: कहीं कोट नरक सुर
1: कहीं कोट जन्म है जीवे मर
0: कहीं कोट भोजो
1: कहीं कोट बैठ ती खाए
0: कहीं कोट काला
1: कहीं कोट की इतनवंत
0: कहीं कोट माया मैं
1: जय जय पाणा ते ते राखे
0: नानक सब किस प्रभ कह
1: कहीं कोट पे वैरागी
0: राम नाम संतिन
1: कहीं कोट प्रभु को खोजनते कहीं कोट दर्शन प्रप्यास
0: इनको मिलियो प्रभु
1: कहीं कोट मांगे सत्संग
0: पार बंकन लागा
1: जिनको है आप सो प्रसन्न
0: नाम तेजम सरातन
1: कहीं कोट खानी अरखंड
0: कहीं कोट आकाश
1: कहीं कोट है अवतार
0: कहीं जुगत की नौ विस्तार
1: कहीं बार पसरी उपासा
0: सदा सदा एक एक
1: कहीं कोट की नहीं बहुपात तापांतरा जाने कोई
0: आपे आप नान प्रभु
1: कहीं कोट पार के दास
0: कहीं
1: कोट तत् की वेते
0: सदा निहारे को
1: कहीं कोट नाम रस पीवे
0: अमर पे सत सजी जी

0: नानक गर्भ गनी अस्ति
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: पत्यो स्वाम
1: जो जाने में जो बनवंत
0: सोत विस्तार पर जंत
1: आपस को कर्मवंत कहा
0: जन्म रह गोह जन प्रमावे
1: तन भूम का जो करे गुमा
0: सोमूर खंदा गया
1: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
0: नान क्या सुख पावे
1: तनवंता हुई कर कर पावे
0: समान प्रसन्न जावे
1: वो लश्कर मान कुपर करे आस
0: पर चित्रता का हो जना
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: इनमें हो जाए प्रसन्त
1: आपंकारी
0: खुआरी
1: गुरु प्रसाद जाका मिटे अपमान
0: सोजन नानक द्रग है प्रवान
1: लोट गर्म करे हो तारे
0: श्रम पाव सगले वृथारी
1: मानिक तपस्या कर अहंकार
0: नरक सुरक फिर प्रियावता
1: मानिक जतन कर आत्म निर्वाय
0: वरद्र देव को कैसे गवे
1: आपट को जो बुला कहावे
0: से प्राणी पुष्णावे
1: सर्व की रेन जाका मन होए
0: कौ नानक तो की निर्मल सोई
1: जब लग जाने मुझे कछ होए जब ये जाना मैं कच
0: तब लग रव जोन में फिरता
1: जब तारे को फैरी में
0: तब लगनी चलना ही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग तम राय दे सजाए
1: परम कृपा ते बंधन टूटे
0: बल प्रसाद नान कहो छूटे
1: तैस कटे लक को उठतावे
0: तृप्तावे माया पछे पावे
1: भोग भिक्षा के करे
0: नै तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राज
0: सपन मन मनुष्य सपा जे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: मुड़ पागी किसे प्राप्त होए
1: करण करावन आपे आ
0: सदा सदा नानक हर जा
1: करण करावन करने हार
0: हाथ कहाँ विचार
1: जैसे दृष्ट करे तैसा हुई
0: आप्या आप्या आप्या आप्या
1: जो किसकी नो शोभ नैरा

0: आप कीनो वापन बीजता
1: हार
0: चेपी निको किच हो
1: सोए
0: अपने चेत आप करने हार
1: कर
0: मन में आप मन अपनी माँ
1: नान कीमत कहना जाए
0: सत्य सत्य सत परम स्वामी
1: गुर प्रसाद ने उख्या
0: सत्य सत्य सत सब कीना
1: होटल देखने मिले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर पारनो
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: सुनी सरवण ख्याणी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
1: पवनीत
0: नाम जपै नानक मन प्री।

0: दुख न हर जा कट
1: दुख जमते नहीं छुट्टा
0: संत का दुख सुख सब जाए
1: संत का दुख नरक में पाए
0: संत का दुख मत हो मलिन
1: संत का दुख सो बाते
0: संत के हत के कुरख न कोई
1: संत का दुख तान रटलो
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत तुम दगदी
0: संत के दुखन ते मुख पावे
1: संतन का दुख का जुलावे
0: संतन का दुख सर्व जोन पाए
1: संतन
0: का दुख तृष्णा में जले
1: संत का दुख
0: ते सब जाए
1: संत
0: दुखी का था को नही संत का निंदक महत ताई
1: संत का निंदक
0: महात्यारा संत का निंदक राय तेहीन
1: संत
0: की निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा भी
0: संत की निंदा दुख में दुख
1: नान संत भावता उसका भी हो
0: संत का दुखी सदा पित
1: संत का दुखी की चेकार
0: संत के दुखी को डाल लगे
1: संत के दुखी को सब
0: संत का दुखी महंकारी
1: संत का दुखी सदा
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख ना दुखते
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ संत का दुखी आज भी तिर टूटे
1: संत का दुखी कितने खाज
0: संत के दुखी को ध्यान प्रमाइये
1: संत का दुखी उजड़ पाइये
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास प्राण तक ही
0: संत के दुखी की जड़ किचनाए
1: आप भी जाते ही
0: संत के दुखी को न रखना
1: संत
0: का दुखी इवल लाए
1: जो जीवित
0: संत का दुखी पुखा नहीं राज
1: जो पाप की
0: संत का दुखी छुटे केला
1: जो बुआ की खेत में
0: संत का दुखी त्रम तेरे
1: संत का दुखी सतमिथ्या कह
0: कीर्तनंद का तुरी ही पया
1: नाम ज्योति पावे सोई
0: संत का दुखी विघ्न रूप हो जाए
1: संत के दुखी को दुर्गम
0: संत का दुखी सदा से कहिए
1: संत का दुखी नाम रहे जीवाए
0: संत के दुखी की पूजन आसा
1: संत का दुखी
0: संत का दुख न तृष्ट कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई
0: पया कृतना में टह कोई
1: नाम जाने सच्चा कोई
0: सब पर तिसको प्रणय हर
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: प्रभु सत करो दिन रात
1: किसे ध्यान सात ग्रह
0: सब छोड़ता है तस्का किया
1: जैसा करी तैसा

0: अवनाशी ब्रह्मन में रख तिस्ते प्रेरणा किस कोई आपे बिना पेदन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद सा तेरे की चरणी पाओ मनसा पूर्ण शरणा जोग हरण पूर्ण जप नेत्र भोर
1: इसका मंत्र न
0: आनंद रूप मंगल सजा के राज में राज योग में जोगी क्या है भक्त सुख पाया
1: नाम किस प्रकार के
0: जा की लीला कीमत न है पिता का जन्म के जाने पोत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदी
1: दास नाम त्याग
0: गुण में जा को प्रमाए ऊंच नीच के स्थान
1: जैसा जनावे तैसा नाम जान
0: नाना रूप नाना जा के रंग
1: नाना पेश
0: नाना विद किनो विस्तार
1: अपनासी एक
0: नाना चरित करेख नमाहे
1: पूरे हो पूर्ण सब
0: नाना विद कर बनत मनाई
1: अपनी कीमत या पे पाई
0: सब कर तिसके सत इसके ठाओ
1: जब जब जीव है नाम
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के दारे खंड ब्रह
0: नाम के तारे सिमरत वेद प्राण
1: नाम के दारे सुनन ज्ञान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के दारे सगले आकार
0: नाम के तारे प्रिया सब पवन
1: नाम के सुंदर
0: पर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नाम चौथे पद में सोजन
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरुष सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत की वाणी
1: सत पुरुष सब माए समान
0: सत क्रम जा की रचना सत
1: मूल सत सतोत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जाय जिसे
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नाम गुरते
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत्य जिंदा कर दे
0: सत नृत बुझे जे कोई
1: नाम जपत का की
0: आप सत्य सब सत
1: आपे जान अपनी मित
0: जिसके से सो करण हर
1: आवरना पूज करती विचार
0: करते किमित ना जाने किया
1: नाम ज्योति भाव
0: विस्मन विस्म पे विस्माद प्रभ
1: का
0: रंग रच जन रहे
1: उनका वचन पदार्थ
0: कोई दाते दुख कौट नहर
1: जाकर संगत रह
0: जन का सेवक सोड़ पागी
1: जन का

0: संग सिख उदरै नानक हर गुण गावटपरी।
1: सतगुरु सिख की कृ प्रतपाल
0: को गुरसरा दया
1: सिख की गुरु दुरमत मलहिरै सतगुरु सिख के वंदन काट सतगुरु सिखो नाम धन दे सतगुरु सिखा हालत पलत सवार
0: सतगुरु सिखो जी
1: गुर के ग्रह सेवक जो रह आप उसको कर कछ ना जनावे
0: हर हर नाम हृदय
1: मन बीच सतगुर के पास
0: सेवा
1: सेवा कर तो हो नहीं कामी अपनी कृपा जिसा करे
0: देश
1: विश्व गुरु का मन मान
0: सेवक परमेश्वर की
1: सो सतगुरु जी हृदय हरनाओ सर्व निधान जी का दाता ब्रह्म जन जन्म है पार ब्रह्म सह स्यान पलया ना जाये सफल दर्शन पेखत पुनीत
0: चरणगत निर्मल
1: पेटत संग्राम गुरु रवे
0: पार क्रम की
1: सुन कर वचन करण गहने
0: तो
1: पूरा गुरु रखियो जा का मंत्र
0: अमृत कीर्त के कहे
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: जिस पावे जिस लई मिला
1: जे वाहे पुस्तत अनेक
0: सत्य पुरख पूरन दिवे
1: कहो बोना पहुंचत प्राणी
0: अगम अगोचर कर निर्वाण
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: साचे कीमत किरे
1: अनेक भगत बंदन नित करे सदगुरु हरि सतगुरु अपने
0: नाम जिस प्रसाद है सा
1: एहो रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमृत होए
1: उस प्रकार नाहिक दे विनाश
0: जा का मन प्रगटे
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: मोह
1: माया कै संग ना ले
0: मन में रखै हर हरे
1: अंधकार दीपक प्रकाश से
0: नानक प्रभु लुभ चैते नाल
1: तप माए ठंड वरताई
0: मन दुखिया दुख ना ठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूरन उपदेश
1: हो चुका निर्भव होए बसे
0: सगल प्यार मन ते का
1: जिसका सातिन कृपा तहरी
0: साधु समझ अपना मुरा
1: पाए चुके ब्रह्म गौन
0: सुन नानक हर हर जस
1: निर्गुणा सरगुण पियो हुई अपने चित प्रभाव मनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: और बिना दूजा ना ही कोई
0: धर्म निरंतर ही को तोए
1: बोत पोत्र व्यारूप रंग
0: भय प्रकाश आज कह

0: जगन यात्रकन कहा विचार
1: जय प्रमोचा प्राप निर
0: तय कौन ठाकुर कुन कहिया छे
1: विषमन विषम रहे विषमाद
0: नानक अपनी गति जान हुआ
1: जय अचल अछेद अभेद समाय
0: उमा के सह व्याप्त माया
1: आप उसको आप आदेश
0: सह गुण का नाही परवे
1: जय एक है एक एक भगवंता
0: तय कौन चिंत के चला गए चिंता
1: जय अपना पाप पत्यार
0: तय कौन तय कौन सुनने हा
1: बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा
0: जय
1: प्रचियो प्रपंचाकार
0: तय गुण
1: काल जाल माया जंजाल
0: लोक
1: सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार की हो बख्या
1: आपन खिलाफ कर देख है जय अवगत भगत है आप
0: पाप
1: आप को तक्रनंद चोज
0: आप रस को
1: जिस

0: परी
1: आप कथे आप सुनने
2: आप है का विस्तार
1: जाति भारत श्रेष्ठ उपाय
2: अपने पहने ले समय
1: ते पिन नहीं कछ होए
2: आप न सब सब जगत प्रोए
1: जाको प्रभु आप बुझाए
2: सतना सोई जन पाए
1: नो सम दर्शी तत्काव्यता
2: नारायण सकल से काजिता
1: जी जंत्र सब ताक है
2: दीर दयाल नाथ को नाथ
1: राखे तिस कोई न मारे
2: सोम आज सुमनोह विसारे
1: कहां को जाए
2: सब श्री निरंजन राय
1: की जुगत जा कैसे वहा।

0: अंत तंग अंतर प्रभ डीठा
1: प्रभु का लागा मीठा
0: सागल सामग्री एक घट माहे
1: अनुक्रंगा ना दिस्ता हे
0: नाव निधि अमृत प्रभु का नाम
1: देहि में इसका विश्राम
0: सुन समान अनुक्त नाद
1: कहना जयस जिसमा
0: दिन दिखा जिसाव दिखाए
1: नाथ जो सो दीपाए
0: तो अंतर तो बार अनंत
1: कर्ण व्या प्रह भगवंत
0: कर्ण माहे आकाश प्या
1: सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसे अज्ञात शक्रम
0: पावन पानी वैसंतन माए
1: चार कुंड दय दिशे समाए
0: इते बिन नहीं कोठा
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण स्मृत माधि
1: सस्य सुन कत्र में
0: पानी प्रभु के सब को बोल
1: आप डोलना कब हुंडोल
0: सर्व कला कर खेला खेल
1: मोल ना पाए गुण है मोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: अरे ओ स्वामी उत्पोत
0: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश
1: नानक में यह विश्वास
0: संत दिना का पेकम था ब्रह्म
1: संजना कह हृदय सब तरम
0: संत दिना सुना तुम वचन
1: सर्वव्यापी राम संरचन
0: जिन जाता तिसकी रह
1: सत्वचन साधु सब कहत
0: जो जो हो सो सुकुमार
1: करण प्राम हर प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर भी हो
1: नानक दर्शन देख सम्मोही
0: आप सत किया सब प्राप्त
1: इस प्रत्ये सगली उत्पत्त
0: इस पावेता क्रे विस्तार
1: इस पावेता एक अंकार
0: अनि कला लखी न जाए
1: जिस पाव जिस लय मिला
0: कावन निकट कौन कहिया दू
1: आप या पाप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक जन आप बुझाए
0: सब भूत आप वरतार
1: सर्व नयन अपेक्ष नहर
0: सकल सामग्री जाका तन
1: आपन जो साथ सुना
0: आपन जान इफ खेल बना

0: आप भला कर तू तत नहीं
1: अपनी जान अपनी जी की
0: आप साचदार इस बचाओ
1: बहुत अपन संग्रह
0: ताकि गतमित कहीं ना जाए
1: दूसरा सो जी पाए
0: इसका किया सब प्रभाव।

0: संपदि परमानंद
1: नरक निवार उदहरो जीव
0: गुण गोविंद अमृत रचियो
1: चित्तवो नारायण एक
0: रूप जाके रंगने
1: गोपाल दामोदर दीन दयाल
0: सुख भंजन पूरन कृपा।

सोरठ महला तीजा। बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई। हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाए।

0: दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: तुद्यागे अरदास हमारी जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास कुमकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले आय फिरंगत गुरती अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जी जिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरी है घर नो निदावै ताए सब था इंसा है दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब था इंसा दसाहा पातशाह की आत्मक जोत जागती जोत चवर तखत दे मालिक धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी वाहे। हे निमाणिया दे मान निताणिया दे ताणी ओटिया की ओट धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जागती जोत आप जी के चरणा कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जी आप जी ने अपार बख्शिश कृपा की अमृत वेले तो लैके ऐसे वेले तक संतान खुले दर्शन दीदारे उपदेश बख्शे सतगुरु जी आप जी का कोटा हनकोट धनवाद। श्यामा दे दीवाना की समाप्ति तो उपरंत आप जी के पावन पवित्र स्वरूप की सेवा की गई है। सवेला जी के बाणी के जाप किए गए सतगुरु जी बाणी पढ़द हो आप जी की सेवा करदे हो आप जी सेवका को बेअंत प्रकार दुटिया हो जाते हैं सतगुरु जी आप अपने जान बच्चे समझ के खिमा करना अगे तो सुमत बख्शना आप जी के बाणी के अंदर चार पहर का दिन सुखा नाल बतीत होया है चार पहर की रात्रि आई है सुखा नाल बतीत कराने इस वेले आप जी के पावन पवित्र स्वरूप सुखासना लई सचखंड श्री हरिमंदर भी चले जाने लगे ने सतगुरु जी रस्ते बहुत घाट तो बचा के रखना अपनी सेवा आप लैनी फिर अमृत वेले दर्शन देने की कृपालता करनी अमृत वेले दे जागने इसनान नितनेम बख्शने सतगुरु जी इस वेले आप जी की सेवा भी सिख संगता से सेवादार हाजरन आप चाले पाने की कृपालता करो जी सही प्यारे मेल जिदा मिले आप जी का नाम चित आवे नानक नाम तेरे पाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਲੋਕ ਇੱਕ, ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਵਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਓਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਆਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਾਉ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਰਗਹਿ ਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ। ਸੇ ਸਿਮਰਾ ਹੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਹੇ ਮੂਚਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨਾ ਝੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪੈ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀ ਚਹੁਕੁੰਟ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵਹ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸ ਤਰੈ।
अनेक माया रंग दिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिहि मार्ग इहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जापत तय पार पराही अनेक विघन जय आए संगारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मलक बहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को न सियानु हर का नाम तह नाल पशानु जय महा पयान तपत बहु काम तय हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहा त्रिखा मन तुझ आकरखै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तहन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन सुमाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग बड़भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदि जाप ताप ज्ञान सब तिहान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमै बहु रतना शरीर कटाए होमै कार राती वरत नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर थी वाय अगन माहे होमत प्राण कनक असव है वरपूम दान नेवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमुख निमुख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीरथ देह छुटै गर्भ गुमान न मनते हुटै सोच करे दिन स अर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही कौ बहु साधना करे मन ते कबहू न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत स्याण पजम का भव व्यापै अनक जतन कर त्रिशन न त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिजै छूट सनाही ऊप पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी सो बालू रै साध संग ए होमै शोर जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा
सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन घट घट चीना मन आपुने ते पुरा मिटाना पेख है सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन साम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर तन कौ धन तेरो नाउ न थावे कौ नाउ तेरा थाउ नि माने को प्रभ तेरो मान सगल घटा कौ देवउ दान करण करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपने गत मित जानो आपे अपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोय सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मैं उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जिहे घट वसै हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा संभाल जिन किया ते सचीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अग्न मैं जिने उबारिया पार बविस था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया उपर साख सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूजै बख्श लिहो तौ नानक सीजै जिह प्रसाद धर उपर सुख बसै सोत भरात मीत बंता संग हसै जिह प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जिह प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड लिहो प्रभ आपे आद अंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगै मान तिसै बिसारै मुगद अजान सदा सदा एहो भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छडना सो अस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर तहब प्रीत भस्म संग होए अंध कूप मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शपश नाहे कश करै छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन सुआ

दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म। नानक राख लेहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कन्हेरे। कोए ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तहारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक। देनहार प्रभ छोड़ कह लागै आन सुवाए। नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भीन दे दस पी हर ले ताओ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान काश बाहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे। अपने प्रतीत आप ही खोवै बहुरस का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिस आगै रखै प्रभ की आज्ञा मन माथै। उसके चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत सर पर हुगत जान अनेत। बिरख की छाया स्यो रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै। जो दिसै सो चल नहार लपट रहे तै अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ न आवै केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तान तान कुटंब सुबाया मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असब बस्तरा मिथ्या रंग संग माया। पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साधकी सरन नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै। मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोग लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जिह कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत। जन नहार प्रभु प्रबीन बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन मैं मरै। जिसका अंतर बसै निरंकार तिस की सीख तरै संसार। जो तुम पाने तीन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे मानै। आपे आप करतन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत सब काश जाने आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए थान थनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद शति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह सांग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जा सगावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताको जस रसन बखानै। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती घर जावै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला।

अष्टपदी। जब अकार इहु काशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरक सोग कहो किसै व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा नानक करनै हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एकै हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए तब सेव साकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त कैस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आपे प्रवीन तह वेदक तेव कहा को चीन। जब आपन आप उरतार तौ सगन अपसगन कहाँ विचार। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानहु आप। जह अशल अशेद अपहित सुमाया ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही परवेश। जह एकै एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा नानक

सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तौ नानक एक जह अबगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत परताप दोहों पाख का आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आपन नाई लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथा अगनत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिस्थार जा तिस भावै ता श्रेष्ठ उपाय आपने भाण लय सुमाए तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मन हो बिसारे तिस तज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राए जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निधान बे अंत अपार नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत किरपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे ब्याप प्रतपालै जी अनुभव भांत जो जो रचियो सो तिस तिहात जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक इक जानिया जन लागा हर एक।

काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगासो। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एकस कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाए नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बिस्माद तिन देखे जिस आप दिखाए नानक किस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पणी बैसंतर माहे चार कोंट दह दिसे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल ना पाइए गुण अमूल सर्व ज्योत मैं जाति ज्योत तार रहे ओ स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लए मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वरतारा सर्वनैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मध अलिप तो रहै जो किश कहना सो आपे का है आग्या आवै आग्या जाए नानक जा पावै ता लए समाए इस ते होए सुना ही बुरा पूरै कहो किने कश करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने।

अपने जी की, आप साच तहारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का इह सो आओ, जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

दुख भंजन पूरन किरपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमुलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भय सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन हुई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभ के उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, परधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नावनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुर नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरणता का दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता की कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तन भेद सुने सा सिमरत भेद नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नास सुने सत संतोख ज्ञान सुने अड़सठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नास सुने सरा गुणा के गा सुने सिख पी पाचा सुने अंध पावे राह सुने हाथ पवे असगाह नानक भगता सदा विकास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जेको कह पिछै पछताए कागज कलम न लिखन हार मन्ने का वह कन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन सुरत होवा मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध मन मोह चोटा न खाए मन जमकै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ्यों प्रगट जाए मन मग न चल पंथ मन धर्म सेति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन पावह मोख द्वार मन परवार साधार मन तरे तारे गुरसिख मन नानक पवह न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंच पावह दरगह मान पंच सोह दर जान पंचा का गुर एक ध्यान जेको कहे

ज्ञान का अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की वाणी रूप तथा घाट करिया बहुत अनूप। ताकियां गल्ला कथियां ना जाहे, जेको कह पिछे पछताए।

है, अकाम है, अदेह है, अपेय है, अजीत है, अपीत है, तरमान है, नदान है, तरवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंत है, अबंध है, नरबूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, नरलंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रयंग प्रयाचंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने,

नाम काम विहीन भेखता मुँह न जाए, सर्वमान सर्वतरमान सदा मानताहे। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक।

चक्कर वक्र फरे चतर चक माने प्रतीन लोक चौदह के विखय जग जापे जे जाप आद देव अनाद मूर्थाप सवे जे थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्विस रचय सयंब गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म तामसो परम रहत अभूत अलख भेस अंग रागना रंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दस पंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतयन पेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंगा रेख परम वेद प्राण जाके नेत भक्त नित कोड़ सिमरत प्राण शास्त्र न आवे ही वचित मद भार छंद तो प्रसाद गुणगन आधार महमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपा प्रकाश निस्दिन अनास आ जान बाहो एक अनुपव प्रकाश निर्दन अनास आजान बाहु शाह शाह राजा राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंका रंकालान काल अनुभूत अंग आपा अपंग गतमित अपार गणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्भुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडट वाड्य चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मकंदे अदारे अपारे हरियन करियन नामे अकामे प्रियं प्रयाज छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशे अदिशय अदृश्य अकृश भगवती छंद प्रसाद कस्ते के आशिज देसे के आभिज पेसे के आगंज करमे के आभंज भरमे के आभिज लोके के आदत सोके के आभिज लोके के आदत सोके के अवधूत भरने के बबूत करने के राजन प्रवाह है के धर्म तुजा है के आशोक भरने के सर्वा अभरने के जगतन कृति हैं के शत्रंग क्षत्रिय हैं के ब्राह्मण स्वरूपे के अनुपा अनुपे के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चतरंग बहिने के एक अधीने के रोजी रजा के रहीम में रहा के पाक ब्याव हैं के गैबल गैब हैं के आपल गनाह हैं के शाहन शाह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहीम हैं के कर्मन करीम हैं के सर्वं कली हैं।

सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीमे, के परम पहीमे, के आकल अल्लामे, के साहिब कलामे, के हुसन बजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलामे सलीकत मदामे, गनीमत सकास्ते गरीबल परास्ते, बलंदल मकाने जमीनल जमाने, तमीजल तमामे रजू नदाने, हरीफल अजीमे, रजायक जकीने, अनेकल तरंग है, भेद है, अपंग है, अजीजल निवाज है, गनीमल खराज है, नरक स्वरूप है, तर्मक बबूत है, प्रभक प्रवाह है, सजग सदा है, सदावंग स्वरूप है, अपेति अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदावल अकाम है, निर्वाद स्वरूप है, गाद है, अनूप है, ओंगाद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी, अनामे, त्रिपंगी, त्रिकामे, त्रिवर्गन, त्रिबाधे, अगंजे, अगाधे, सुवन सर्वभागे, सुसर्वा अनुरागे, त्रिभुक्त स्वरूप है, अशेज है, अश्युत है, के नटन प्रणास है, पृथ्वी प्रवास है, नरक प्रवाह है, सदाव सदा है, बबक स्वरूप है, प्रजक्त अनूप है, नरक सदा है, बबक प्रवाह है, अनक स्वरूप है, प्रजक्त अनूप है, चाश्री शांत अपंग है, अनंग

है, धंध है, अबंध है, भक्त है, बरक्त है, नाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, भेख है, ढा है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, जात है, अजाद है, चरपट छंद त्वप्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता सावल छंद त्वप्रसाद नमो नरक नासे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं बभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध बभूते अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकन शरीक है अमितो अमीक है सदावं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वप्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमल कमाल है के हसन जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीफुल सकन है हरासल फुकन है कलंकण प्रनास है समस्तल निवास है अगंजल गनीम है अजायक रहीम है समस्तल जवाह है के साहिब करा है के नरकण प्रनास है बेहतल निवास है के सर्वल गवन है हमेशा रवान है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परम परम ईस है समस्तल अजीज है अदेश अलेख है अमेसर अपेख है जमीन जमा है अमीकल अमा है करीमल कुमार है के जर जमाल है के अचलम प्रकाश है के मित्तो सुभाष है अजब स्वरूप है के मित्तो बभूत है के मित्तो प्रसा है के आत्म प्रवाह है के अचल अनंग है के मित्तो अपंग है मधपार छंद त्वा प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन बदाम अरबर गंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अनशिज अंग आसन अभंग उपमा अपार गतम उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रितर त्रास

नायक हैं, कलकायक हैं, बसंबर हैं, करणालय हैं, निपनायक हैं, सर्पायक हैं, पापंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, प्रयाज छंद, नमो सूर्य, नमो चंद्र चंद्र, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंद, नमो बीज बीजे, नमो रासन तामसन शांत रूपे, नमो परम तत्त अतत्त स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुत जुते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कल नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनाद बबूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, तरपंगी तरकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी शांत अजय अलह अप अब अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे प्रया छंद नमस्तर प्रणामे सुमस्तर प्रणासे अगंजल अनामे सुमस्तर निवासे निकाम बबूते सुमस्तर स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म बबूते सदा सचदानंद सतर प्रणासी करीमल कनिंदा समस्त निवासी जाय बबूते गजाय गिनी में हरियं करियं करीम रही में चतर चतर वर्ती चतर चतर भुगते स्वयं।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्नी सचो सच त्याया उन्नी मंदे पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया।

जिन हर हृदय नाम नाम बसियो तिन मात की जय हर भंजा तिन सुनी दे फिर बिन नावे ओए खप खप मुए करंजा।

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती वाह छे दस प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्या है। फिर अंकट गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दया रहता है। सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पहाड़दार अंतर के गल से बोलो जी। वाहेगुरीबनवास आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया बन सकया दे चलाई तेग वाहे दे कंडेट कीता तना प्यारियां से त्यारियां की कमाई रहते अंतर के बोलो जी। वाहेगुरु जन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सिंह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुवाइया चरखड़िया के जड़े आर न चलाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा किसी तक कैसा स्वास्थ्य संघ निभाया तेना नहीं कमाई जाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु पंजा गुरुद्वारा दाते अंदर के बोलो जी। वाहेगुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम किता है जित आवण का सदका सर्व सुख हो गए। जहां जहां गुरु खालसा साहब चरिया देख देख की फतेह बिरध की पहच पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहेगुरु सिखा नु सिखी दान केर दान रैत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन निशना चौकियां चंदे बूंगे जुग जुग हटान धर्म का जयकार बोलो जी। वाहेगुरु सिखा दा मन नीवा मत उचे मत पत के राखे आप वाहेगुरु गुरु की बनवाज पंथ सदा से आई दार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब तो गुरुद्वारे गुरुता जिन्हें तो आप के पंथ में छोड़िया गया उन्हें दर्द सेवा समा सदा अपने खालसा जी बख्शो फिर नोटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ प्रतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी चरण कामना जरदास बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान हुए संकट दर्शन का देखने खाल उतार दियो बेहत बाणी के पाठ ऐस वैरागी सिंह ने आप चरणा जासा की वाद कीर्तन किए ने विद्वान बीरा ने अज तक उन्हें अमृत कथा विचार की है कृपा करो हो भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतान हिरदय निशान की कृपाता करो जी। अगो तो शुद्ध पुत्र बाणी चाहिए बल बुद्धि बख्शिश करो गरीब नवाज जी इस खुशी आप जी बख्शिया दातों में पुत्र कड़ाप शाही दगे तैयार कर खाल दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सार संगत की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी दा पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी। दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गीबनवाज आप जी बख्शिया दाता जो नगर तुर सेवा जी प्रमाण कर दी गीबनवाज आप बेचाना सेवा कर रहे सारे टैरिया सिंह सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भावन बख्शो की बात करो कृपा करो गरीब नवाज ये दतार जी अमृत वेद लैके दरते आई है साफ संगतान की हाजरी दर प्रवान करो कड़िया लिखे लाओ संगतान का दरते तिर पुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज से कौम खालसा पंथ न एकता दुआग प्यार की बख्शे करके सतन दोजदार बख्शो चरण न जुड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शे करके हर मैदान दुआन फतेह बख्शे की बात करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज कर बैठिया लाइव कथा की शर्म कर रही सारे संगतान की हाजिर प्रवान करिए लेके लाओ रार आपने बख्शे की संगत तो बख्शे ने संगत आप जाना धनवाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह दर संगत माया भेटा कर चरना प्रवान करो बख्शा साहब ने कमाइया सफल करो कार्य वाद बख्शे सब संगतान दुभकामना संबंध पूरी करो जी। रार मेहनत करो सेवा प्रवान करो भुला चुका माफी बख्शो पित्र हुक्मना में बख्शे कार्य उपरंत लड़ी वार सहज पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो शोते पित्र सेवा लैंड करवा देता रेंदे कार सुवार के चरण अनुरादी बनाओ सही प्यारे मेरे जिले मैंने आपका नाम जता है नानक नाम चढ़ती करा आपते पाने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्ञा भई अकाल की तभी चलायु साहब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल भूत है खोज शब्द मह राज करेगा खालसा आकी रहे ना को
ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ

0: करे गुरु कर गे तार जगदीश बोले सुनहार सत्याकाल।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

छीजै अहनिस मूड़े, क्यों छूटै जम पाकड़िया, बब्बै बूझै नाही मूड़े, भरम भुले तेरा जन्म गया, अणहोदा ना उतरायो पाधा अवरा।

सतगुर का उपदेश सुन तू विखा। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। तदै धावत

आदि पुरख अपरंपरो तारे राम। अगमय गोचर अपर अपारा पार ब्रह्म परदानो। आदि जुगादि है पी होसी।

माता पित भाई सुत चतुराई संग न संपै नारे सायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की।

मन तन सुख पाया, सो सहु चित आया मन वसाया, अवगुण सब विसारे जा तिस भाणा।

लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, जो रंग कुसुंब दिखाया, खिन पूरब खिन पच्छम छाए, जो चक कुमार पवाया, दुख खावह दुख संचह भोगै, दुख की बिरद वधाई, नानक बिखम

0: जो मेरे नाल हट बीती है। बचन ध्यान नाल सुने, ये हट बीती दस रहे। गुरुद्वारा ग्रैंड रॉक न्यू जर्सी, काफी पुरानी गल, ये बचन काफी साल हो। चांजी चांजी उच्च गुरु की सेवा हेड ग्रंथी सा आप जी ने हुणे चढ़ाई की है। उन्हां दे परिवार माता जी थोड़ा चिर पहले दास उत्थे कीर्तन ते भी गया सी, बहुत प्यार करते सी। गुरसिख ते बड़े देखे पर उन्हां वर्गा गुरसिख भी किते दूर दुराडे उन्हां जाना सी। असी उस वक्त थोड़े दिनों वास्ते सेवा च आए, फिर बड़े प्यार से आखन लगे भी असा दो दिन लग जाने में, तो तुसी अमृत वेले की सेवा करो। झटपट मेरे रसना तो एक गल है सत बच्चन जी धन भाग महाराज जी दे प्रकाश की सेवा साढ़े तीन पौने चार बजे कहते ने होंगी है। मैं कोई गल नहीं जी, असी त्रै जने आए वा करांगे सेवा। सर्दी के दिन आही दिन से बर्फा का ढेर लगे, उस पास बर्फ पी भी बड़ी इन्ह दिन बहुत बेअंत है। असी अमृत वेले उठे स्नान पानी किया महाराज जी के सुखासन साहब जी के कमरे तक पहुंचे। शीशा लगा सी तो मेरी निगाह हॉल च पाई, तो मन में आ रहा भी ये संगत कितों आई है। साढ़े तीन का समा सारा हाल खालसाही जहो जलाल सजिया बैठा है। बोलो सरे, मैं वेख रहा मैं हैरान होया कि इस वेले ये संगत कितों आई है। महाराज जी का सचे पातशाह की पावन पुत्र बीड़ सिर ते लई भाई जसवीर सिंह चौर साहब करने वाले इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह जी लेके आ रहे हैं। ते जकारे बजने शुरू हो गए, और इनी आवाज पहले तो अंदरों बड़ा डर जा लगा, घबरा भी गया, पर एकदम सच्चे पातशाह ने जहन के आख्या कलगी वाले तेरी खेड़ है कोई। ये तू आप ही विचरता पे है एवें लग रहा। प्रकाश किया महाराज जी का, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭਲਾਈ। ਬੜੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
1: ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ।
0: ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਧੂਰੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਮਾਂ।